महान जीवत मरह दरगहा परवान जो किश हो आसो तुझते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिली है जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी ग्वार री मोहल्ला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटे जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यो हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे न विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी ग्वार री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाव गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु न जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वार री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्यावो रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किस नाही राखन हारे को सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियानप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर भी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे जे धंधे

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तख्त सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाइए कहो नानक वड भागी पाइए जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार जो हलाहल सो पीवै बौरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता पेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन छुटै तौ किरपा ते हम मैं टुटै तुम लाभ हो तौ लागहै सेव हम ते कछु ना होवै देव रहाउ तुद पावै ता गावां बाणी तुद पावै ता सच बखाणी तुद भावै ता सतगुर मया सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद भावै सो निर्मल करमा जो तुद भावै सो सच धर्मा सर्ब निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन निर्मल।

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मधे बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हर सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का हुए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना। निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माई। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई। गौड़ी गुआर री महला पंजवा।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियान को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वास होते।

रहाउ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा जाके वास खान सुल्तान जाके वास है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे दीन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी ग्वारी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मज्जन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी ग्वारी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पहर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवां चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

मूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुरे अपने कहो बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावह साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का सब किछ तां का होए नानक तां को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जां कै दुख सुख सम कर जापै तां को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जां कै अचिंत वसै मन आए तां को चिंता कतहु।

पंजवां अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किन बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवां कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमै मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

ठाकुर होए, ताको सहसा नाही कोए। जाको तुम दीनी प्रभ तीर, ता कै लिप्त न आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा, दलब दे पाई वडभागी। नाम ना जपहै ते आत्म काती, मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम। नाम बिहून जीवन कौन काम रहाव, खात पीत खेलत हस्त बिसथार। कवन अर्थ मृतक शिंगार, जो ना सुन जस परमानंदा। पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। केवल नाम हृद माहि समाया, गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तरीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया,

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करन हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्स पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सा मत पूरी जित हर गुण गावे वड्डे भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा।

कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाई कर कृपा।

करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरपुरे की टेक टकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुरपुरा पेटिया लिवलाई। रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर मिलत कृपाल कर।

आई। गुर पूरे जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

जात पूरै गुर काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पी

सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारहु, हर के दास के चरण नमस्कारहु। सास सास प्रभ मने सुमाले, सो तन संचोह जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिनवाए। अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

प्रभ का नाऊ सगल रोग का बिनसे आठाऊ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

गुरमूरत स्यो लाए ध्यान, नीहा ऊहा पावह मान। सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखाणी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोई। जा की दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक। हर हर अखर मन मह लेख, रव रहया सरबत स्वामी। गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा। पै मह रचियो सब संसारा, तिस भौ नाही जिस नाम आधारा। भौ न व्यापै तेरी सरना, जो तुद पावै सोई करना। रहाओ सोग हरख मह आवन जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना। अगन सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवां, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग।

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाटा चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ

प्रभ अपदा काटी गौड़ी महल्ला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाव रोग

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चढ़ उतरह पार साधु संग करहो सब कोई सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाइए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हर मीत प्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाव चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल

जन्म जरा मृत जिसवास, सू सुमरत सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय संभाल,

किल विख खोए, सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म धर्म नियम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी। पूरा न्याय करे करतार, अपने दास को रखनहार। रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वड ताप। तिन मारिया जे रखे न कोई, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाया आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लही है, रसना राम नाम जस कही है, रहाओ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाओ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर संग राते पाहे ना जले हर संग राते माया नहीं चले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटह तुम्हारे नाई पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख न लागे हर संग राता अन दिन जागे हर संग राता सहज कर वसै हर संग राते ब्रह्म पौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कहो बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवा उदम करत सीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल कर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लग दासह पाए आप गया ताया पह पहे कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हर अग्नि अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख सीतल मन पहे जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरै सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा धुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूरन पाई ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया च
चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंद पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिखतरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहे के संत के घर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारू गावे सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाव बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया से वड भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे जोगी जति सिद्ध हर आहे जिस है प्रापत सो हर गुण गाए ताकि शरण जिन बिसरत नाही बड़ भागी हर संत मलाही।

गौड़ी महला पंजवा हर तीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले वह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कै पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई।

बसन सुहेला, एह संसार विकार सहसी मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहुर ना हुए गो फेरा, अंतर जामी पुरख बधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला।

बा राखु राखन हारी खेद कर है और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

रहाउ। अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है, देहो दर्स हर राया। सोई हुआ जो तिस पाणा, अवर ना किन्ही कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी, कृपा निद दयाला, राख ले हो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बांछे। गौड़ी महला पंजवा, हौ ता कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहाउ। महमा ता की केतक गनिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसारे अवर ना दाते। जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण पर सो तरिया, संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परों ता जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की रेन होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दीसै, सब किस जोग मह काटिया, नाम निदान सद नव तन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाउ। नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया, निमक निमक नमस्कारा, दीखिया गुर की मुंदरा कानी, दृढ़े हो एक निरंकारा। पांच चेले मिल पए एकत्रा, एक सकै वस किए, दस बैरागने आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई बेपूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जह पौ नाही तह आसन बांधे हो, सिंघी अनहत बानी, तत बीचार डंडा कर राखे हो, जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वडभागी पेटे, माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याए ले मीता, हर औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता रहाउ। अंधकार मिट्यो ते तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होए मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा। नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाए, नानक हर जियो तां को देवै, जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। अंध कूप मह हाथ दे राखो, पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ। कर्म करावन सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रभराती, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी। राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभ होआ, अन दिन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अति ऊचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा,
तुम हर से तीर आते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुम्हारा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा, सहज समायु देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाउ। काट जेवरी कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचर्ज गुर है दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन है प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अन पह ठहरायो। मान आ गया सर्व सुख पाए, दुखा ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता की ओट गही जैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ। मन की मत त्याग हो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख योही त्याई रे। कोट पतत उधारी खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख भंजन स्वामी,

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारी इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाउ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख है पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नाहारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हजूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय भीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरह गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है
जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्नते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहा सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिए तेरा अंगरोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुर दिया नानक ता का पहो गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर तन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं दितनो।

ही खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हूं मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरे, गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसे, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त पया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइये, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइये, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइये, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइये, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवा।

करो रे मन ना हो रे पर पर ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सो

केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो लो बिख घेरे मन

गेव बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गेव निरपव पये संत भ्रम डारेव पूर्ण सरबा गेव जो किस करता है कारण कीनो मन बुरो ना लागेव साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागेव जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनागेव नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागेव गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाव लाती भूख तृष्ण सब लाती चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुरु पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवार नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई इह पैखर पए पैरा तब इह कहां कमावन परया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरै मूसे रहाओ बरत नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता आगे ठहर ना पावे ऊहा काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर ओह सगली चाख चखाईए नानक कहतो एहो बीचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेव हो अर नाम त्याव हो त्याग हो मन हो गुमानी गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कशु ना होवे स्वामी ज्यो राखो हो त्यो रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाव हो तित ही लागा पूरन खसम हमारे करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लाव हो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो राग गौड़ी माज महला पंजवा।

तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जीओ पूजा अर्चा बंदन देवा जीओ दासन दास नाम जप लेवा जीओ बिनो ठाकुर पै कहिया जीओ इस पुन्नी मेरी मन तन हरिया जीओ दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जीओ हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ एहो अजर नानक सुख सही है जीओ गौड़ी माज महला।

मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर नेड़ नाया।

आज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरा प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा, साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान। और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता, तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना, जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थर मान, अचरज लखियो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी। हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यो, ज्यो सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जानियो मिथ्या रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ धावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा साधु एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे शुद्ध सब बिसराई,

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवां साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवां को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख ना हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै गौड़ी महला नौवां साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए साधो।

गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राख है आप बड़ियाई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख भी चार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे आसमाई, निज कर व्याप रहे आ निज ठाई, पुस्तक कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण है वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल भूले बहोर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीरज हर नाय, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पैर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोल शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुलह सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहा सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान से अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन खाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजै पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावह, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ, माया मोहे देवी सब देवा, काल ना छोड़ै बिन गुर की सेवा, ओहो अबनासी अलख अपेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अग्न पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाय, नानक गुरमुख रह समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाय, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए, होमै मैला एहु संसारा, नित तीर्थ ना वै ना जाए अहंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा, सो जन साचा जे होमै मारे, गुर कै शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नटबाजी पाई, मन मुख अंध रहे।

हिरै अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखान है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दू जय पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संत।

माया दासी भगता की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निव है अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवे है साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हूं मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे है सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हूं मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेत है उपावन हारा, मर जम है फिर वारु वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभलाए, हम मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई, जां हिरदय बसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई, हुकम पछाणे बूझे सच सोई।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हिरदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हिरदय

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाय उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाय मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए घर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेला।

सतगुर पूरा गौड़ी महल्ला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया।

ही जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिस पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

कह पांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्ज सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, किस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाले रहाव बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे।

सुन सुन पंत डराऊं बहुत पै हारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उभारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो जिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भोजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हम मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा घर ते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हूं कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करहु।

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, एहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारी। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलोह प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यों मिले तिवे मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहिथा जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो। डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी। गत नहीं जानी हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरे कुल तारे। नानक नाम वसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा। राम नाम वापारा अगम अपारा, गुरमति धन पाईए। सेवा सुत भगत एह साची,
ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਮਤਹੀਨ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਵੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀਉ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਉ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਵਿਟੋ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

मोड परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझे अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

करि आवहु नाह प्यारी। हो मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब दिसा हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया। मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया। लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वधाई कर लाल आया प्यारा। सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंधप हरखे उपजिया। दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह। हर मिलिया कंत सुखदाई, गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली। मन है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया, बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही। सतगुर पुरख मरारी, बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी, गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर, चरण कमल अराधिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैण अरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधारै, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारे सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवार। पनीत करे तिस जंत है, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिटे हैं ब्रह्म नासे हैं। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागण। पेखों थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला।

एक बखाननो, नानक एक अनेक पौड़ी। ओवंग गुरमुख कियो अकारा, एक है सूत परोवन हारा। पिन पिन त्रैगुण विस्थारं, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू पांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई है, तेहे संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक तां कै सद बलिहारा। सलोक धन धन कहां पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बाछ सुरगना आछ, अत प्रिय प्रीत साध रज राच है। धंधे कहां व्यापहता हूं, जो एक शाद अन कत ना जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोय। कहो नानक कृपा पई, भगत ज्ञानी सोए पौड़ी। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, अनक जुगत शास्त्र कर पातों। ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो, कहत सुनत कस जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, उसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा तारी। सलोक आमने आए सृष्ट मह, बिन बूझे पस ढोर। नानक गुरमुख सो बुझे, जां कै भाग मथोर। पौड़ी या जुग मह एकै को आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया। गर्भ कुंट मह उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देव नहार मन है बिसराना। तारो कृपा जिसह गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म, आग्या पिन्ना कोए। आमन जाना ते मिटे, नानक जिहे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे। इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिखम एह माया। कर कृपा सतसंग मलाए, नानक तां कै निकट ना माए। सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ, कीने तिन प्रभ आप। असे आपन हों हों करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी ये कह आप करावन हारा, आपे पाप पुन बिस्थारा। या जुग जित जित आप लायो, सो सो पायो जो आप दुआयो। वाका अंत ना जाने को, जो जो करे सो फुन हो। ये कहते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राच रहे बनता बनोद, कुसुम रंग बिख शोर। नानक ते सरनी परो, बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जेह बिद कतु ना छूटी है, साकत तेऊ कमाहे। हौ हौ करते कर्म रथ,

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न मेहराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

या भवजल करना यया जन्मना आवे सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जान कह रह एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कह नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस भ्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो।

नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होना जत कत ओही समाहे कुलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक तेउ गुवार पौड़ी गंगा अंगरासे काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पए नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट पए आपह गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी

दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा सार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता, चाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, चार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह कनो, साची दे विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जानै हौ कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, ज्यो जानै हौ भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, ज्यो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हौ मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बीया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एहेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न, अंधकूप ते तेह कढ़ो, जेह होवो सो परसन। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक ते

पुस्तक करो न्याहू कियो संयोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निध गोविंद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए टहल मैल ताको मिले जाको साध कृपाल साधु संगत तौ बसे जो आपन होहे दयाल टोहे ताहे बहु पवन बिन

रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

कह टेक आधार रैण दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर ये कर्म कमाय हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह। पौड़ी तत्ता तां स्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव। ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो।

सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की डाड़ मिटत बिन साही, अड़ाड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख भये,

खिन मैं ऊने सुबर पराहु खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहु हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात इहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब नसै, संत का संग बड़ पागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गमान ना मन ते हुटे सोच करे।

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साज।

महान सगल कटा को देव दान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी।

जिनकी आतिस कीत रख नानक निबही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया। बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख।

आश्रम करे संग सहाई किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोय गर्धभ प्रीत पस्म संग होय अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कहां पिंगल पर्वत पर भवन।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता।

हार लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत किया।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर

तिसलई लड़ लाई तान तनंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी यह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है यह प्रसाद बस है सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना यह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग यह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसै त्याग कत अवर नभावह।

मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावे नानक।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे

का ध्यान, जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चतारी, जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप, जेह प्रसाद तेरी नीति जात,

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहू धावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध क्या संग बसै थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग दृढ़ सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरता जावे, पार ब्रह्म साध हृद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग पै आग्याकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे

तर सत्तर सुमान ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही अब महान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा माने अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी संगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे। ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

न पाइय धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने

का उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्म।

प्रभ भावै बिन सास्ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पतत उधारै, आप करै आपन बीचारै, दोहां सिरियां का आप सुहामी, खेलै बिगसै अंतर जामी।

इसकै हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत अपने आप बचै परमे फूला दह दिस धावै।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान।

हरि अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भला।

को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ का

तार अष्टपदी संत कै दुखने आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै ना कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरवा।

नानक ज्योति पाव है सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओह सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख।

ऐ बड़ भागै नाम जपत पावै विश्राम। नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए।

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

मिले जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाए, सगल देव हारे।

पे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन करके

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवरना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदे चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को।

के जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप तां को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके करतब बिरथे जात मारे ना राखे अवर ना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया ई अमृत इह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

नानक जिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बुद्ध हो हर कह नाए।

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। इयो रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।

ज्ञान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाए तरिय संसार बिन भगती तन

सुन समाती आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हर्ष सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

आप पति यारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहु बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह भई कह।

पह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

फल पावहु, हलस पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाय।

दृष्ट दर्शन पेठत कुदरत श्रेष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमर।

आमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मत अलिप तो रह, जो किस कहना सो आपे कह। आज्ञा

किने कछ करा आप भला कर तूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल भये जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संगारै नीच हरख सोग।

मोह परम बूढ़त घनो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहु नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसियो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

तारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे।

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद बरत संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट चार।

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पए संतोख दिया गुरुदेव मन

हूं मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, तरन गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटंब सियो, गुण गोविंद प्रभ रमन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया, नानक सुख विश्राम, सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सुआया, नानक होत ना घाट पौड़ी, पूर्णमा पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सभी ऊपर जा का हाथ, गुण निदान गोविंद गुर, किया जा का होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब विद जानन हार, संत सहाई सरन जोग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा नह बूझिए, सिमरो हर के चरण, पतत उदारन अनाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण, सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाय, पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश को दृढ़ तिसका हुए उदहार, किलबिख काटे हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जाने ओ प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महला चौथा हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे होमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उपरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया तेरा शरीक को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तुद जेवर दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है। श्लोक

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिमें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

जिन को वारिया जिन जपया सिरजन हार महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन।

आपे वर्तै नित कर कर देखै चलत सबाय। महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारिया नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रह मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल

हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओ सहत न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जां हर हर नाम त्यावे हर बातां आख

लालच अटिया मनम कहोरे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मन मुखा दै सिर जोरां अमर है नित देव है भला जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेर खला काम व्यापेक सुध नर से जोरां पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चलै सो सत पुरख भल भला जोरां पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिया सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे से कूड़े आर कूड़े

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वेमुख वेमुख नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूह पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुंह काला दोहां वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया।

सच साहा हमारी, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह, गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी ओना अगै पिछै थां नाही जो सतगुर मारे।

हर तिनका दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही, तुह करतै आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही, नावै की वडियाई वड्डी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदै गुरु बह टिकिया, तिस जन की वडियाई वड्डी होई, तिस को जगत निमया सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई, तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह, जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै, सो पूरा होई, गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करतै आप वह टिकिया,

चरण धोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम त्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया, महला चौथा वडभागिया सुहागनी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए पौड़ी। एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्निया, इको सुनिया।

हृदय है। जिन हर बसिया मन माहे, हर दरगह ते मुखी उजले, तिनको सब देखण जाहे। जिन निरपव नाम त्याया, तिनको भव कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको धुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे। वे आप तरे सब कटंब सियो, तिन पिछे सब जगत छडाहे। जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत पई हरियावली।

इन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों हो मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याय सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

धोए, सच वणंज है रंग सियो, सच सौदा होए, तोटा मूल ना आवे, लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच वणंजिया, जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी सालाही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाले।

उठा। सतसंगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ाव है, हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया। तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुंह जम मारिया। तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

उता सतगुरु पुर के अगम है, जिस अंदर हर उर तारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब उभारिया, जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया, एहे गल हुए हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम बिचारिया पौड़ी, सच सुतिया जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे,

जो गुरमुख सच रवे हों बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाई नाम अपार भौजल डुबद्या कढ़ लए।

वंदे शब्द लगावन हार, जन नानक जिन को कृपा पई, तिन सेवया सिरजन हार पौड़ी। सच सच्चे के जन भगत है, सच सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों ही सच लादया। सच साहेब सच जिनी सेवया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड्डा है, सच सेवन से सच रलादया। सच सच्चे नू साभास है, सच सच्चा सेव फलादया। सलोक महला चौथा, मनमुख प्राणी मुगद है, नामहीन परमाय, बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाय। हर प्रभ आप दयाल होहि, ता सतगुर मिले।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कसात ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला खोए उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वल छल कर झट कढ दे, फिर जाए बह कूड़े आरा पास, विच सच्चे कूड़ ना गड़े, मन वेखो को निरजास, कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर संत सहाई नानका, वरतै सब जाहर महला पंजवा, मुंडो भुले मुंड ते कितै।

नार पराइया लोके अंदर ठाणी सन्नी देन विखम थाए मिठा मद माणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अज राइल फरेसता तिल पीड़े कहानी सलोक महला पंजवां सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान महला पंजवां जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए पौड़ी पंजवां नारायण लया ना ठूंगड़ा पैर किथे रखै करदा पाप अमित्या नित विसो चखै निंदा करदा पच मोआ विच देही पखै सच्चै साहिब मारिया कौन किसनो रखै नानक तिस शरणागती जो पुरख अलखै सलोक महला पंजवां नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम महला पंजवां अवखद सबे

0: संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लहर है गालिया जिथै थोड़ा धन वेखै तिथै तपा पिटै नाही धन बहुतै डिठै तपै धर्म हारिया भाई एहो तपा ना होवी बगला है
1: वह साध जन

लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे। गुर सतगुर अगे को जियो लाए काले, तिस अगे गुर सिख कार कमावे। जे ठगी आवे ठगी उठ जाए।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावे।

नानक अंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागती सद सद कुरबाणा। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

नानक नाल न चलनी जल बल होए शार पौड़ी से ही उभरे जग विच जो सच्चा रखे मोहे डिठे तिन कै जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सकै ना लखे श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फित पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई तिस सिउ सब किस जिस कै हाथ कमित्रां से कांडी है एक विख ना चलह साथ पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वत सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी जो जन भेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एहे रतना खाणी मस्तक हो है लिखिया हर सिमर प्राणी तो साधिचे सच नाम नानक मेहमानी श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख।

ना लद्या नानक सी साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत बेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहों फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

किसै प्राप्त भाई रहो, जिस दे बधाता मन तन भीतर मौलिया, हर रंग जल राता साध संग गुण गाया, सब दुख है खाता नानक सोई जीविया, जिन एक पछाता। सलोक महला पंजवां। खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा तनी स्यों, नानक सह सह गंठ। महला पंजवां। वसारेंदे मर गए मर पे ना सकै मूल, वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल। पौड़ी। सुख निधान प्रभ एक है अबनासी सुनिया, जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया, ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

हथे पैर भौंदा फिरै खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहै जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगै नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुटै बद्दा गुण गावे अबनासी जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवां कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवां बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी भव सागर संसार बिख सो पार उतरी हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है श्लोक महला पंजवां नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया पाओ दुइया कुठा हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। श्लोक महला पंजवां जा चढ़ी सा सार जो जा चंदी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया। महला पंजवां नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मै से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनास पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण इको सिमरी।

तन रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तन फुटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काला जसवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभु।

तरवर हौ पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया हम।

आज तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी।

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई।

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज।

तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समावो आप ना डरो ना अवर डरावो। गौड़ी कबीर जी पिंड मुआ जियो केहे घर जाता शब्द अतीत अनाहद राता जिन राम जानिया तिन्ह पछानिया ज्यों गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथै बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ। सो गुर करहो जे बहुर ना करना सो पद रवहो जे बहुर ना रवना सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना। उल्टी गंगा जमन मलावो बिन जल संगम मन महनावो लोचा समसर एहो व्यवहारा तत विचार क्या अवर बिचारा। आप तेज बाए पृथ्वी अकासा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित घर जाओ जे बहुर ना आवो। गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाई है नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सहज सुपाए मेरा मन मानिया रहाओ। ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया राम भगत बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जाने।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेहो। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना जैसे कुबज कुरूप गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाव तिनकै सद बलिहार जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन भावे रहाओ जेहे कट राम रहया भरपूर तिनकी पग पंकज हम धूर

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अन पहु पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु।

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी।

रहे नाही। हर तज कत काहू के जाही रहाउ, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोई, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निजपत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना हो।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ, साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर

तपत बुझिया अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। हासन की बिद सब को जाने, छूतन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह ना।

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुन है ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यों क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहू काल है छाड़ को चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहू खोव है आग लगाए मंदर में सोव है अवर्ण हस्त।

साध जीवत पितर न मान कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावह कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्ध दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट भीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जा पह जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का

हाल खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है टूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिय तोल ना तुलिय पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है,

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

देव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन्ही माए अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु।

झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ, जां तिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता, तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठोर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी, आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाओ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाव भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

रहाव और मुए क्या रुई है जो आपा थिर ना रहाए जो उपजे सो बिनस है दुख कर रुए बलाए जह की उपजी कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बडभागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम।

चार गौड़ी लख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब इहो

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

कह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई तां घट माही घाट जो पावा सो घट छाड़ अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी परम सियानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

गै नडर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

अर्दह उर्दह मंज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यों परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूलह फल हुई

उपत पहचानिया, ममा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिलमावे, मगन पयाते सो सच पावे, ममा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पांच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कहे, जैया जो जाने तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ए रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया ए रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे, अर जो तहां प्रेम लिव लावे, तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन समहार, बिसन

होए। एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सो दोहो घट परचा की बात नरोड हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लखै जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो

गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जो मना रह जह का बिछरा तह थिर लह बावन अखर जोरे आन सक्या ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सुअन पै रह पंडित लोगहां को व्यवहार ज्ञानवंत को तत विचार जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल सूदा करे बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाए तीन नदी तह त्रिकुटी माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह व्रत चढ़े अन दिन आप आप स्यो लड़े सुरखी पांचो राखे सबे तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तो लो

पाहन तारियले। राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा। ब्याज अजामल तारियले, कर्ण बदक जन तेउ मुक्त भये। हौ बाल बाल जिन राम कहे, दासी सुत जन बिदर सुदामा। उग्र सैन कौराज दिए।

जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो।

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतो जी।

सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना।

है तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

दात जिन दिन कर कह कीती रात खसम वसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावे धीरक भावे धक्के।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

कही है, सर्व निरंतर रव रहे आ, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाओ, मन की मत मता गल मता, जो किश बोलिए सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन धोए साखी पास, जैसा तू करह तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुदे आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई। गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ। कर्म धर्म सच साचा नाओ तां कै सद बलिहारै जाओ। जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान। हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेते एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

तेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी बुरा भला कहो किसनु कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

भेद अठसठ मज्जन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल न लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हिरदय हर रविया हिरदय देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूट है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूट ता को लेख पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरै प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनाव है किसको किस समझाव है समझ रहे किसे पढ़ाव है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अप

कीमत पाए। अष्ट दसी चहो भेद ना पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार रहाउ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास। महली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त बलावे सोए। देव

सो प्रगट जाय, सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवरना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धू विनाशक। त्रिहो गुण आस मरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यो रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मनमुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै तौ जम कहां करे मोस्यो आगै रहाउ आसन रास्ती तौ सन्यासी जा जत जोगी ता काया भोगी

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला धो पदे तित सरवर डै पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विश्वे।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवै उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगै रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रुद

जहां हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजारी।

बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कहिए बंदा आसा महला पहला। गुर का शब्द मने मह मुंदरा, खिंता खिमा हंडावूं। जो किश करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावूं। बाबा जुगता जियो, जुग है जुग जोगी,

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाऊ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

आए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाव, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म परापत होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावै दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिलै सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया परपूर, आपे नेड़े आपे दूर।

गुर प्रसाद वसै मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी हो।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द घर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस जुग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाई ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशी कूड़ा करे व्यापार, बिन राशी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गुआ।

नानक साच समावै सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सपाई गुर कै भै साचै साच समाई बिन गुर पूरे भगत ना होए मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा

समावै सत संगत मेल सब सूझी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरै तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरै ना आवै जाए पूरे गुरते साच समाए जिनको ना

ना जाय। पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप। कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई। जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई। सच बाणी गुर शब्द सुनाई, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए। ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय। जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए। नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा। निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए। अंतर लोभ भरम अनलवाओ, दीवा बलै ना सोजी पाए। गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले।

आपे जान। गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार। गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए। पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे। गुर प्रसादी भवजल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए। हर जियो आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए। निश्चल भगत हर सियो चित लाए, भगत रते पिन सच्ची सोए। नानक नाम रते सुख होए, आसा घर अठवां काफी महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई। गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई। मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ। इस युग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार। बिन नामै जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर। हर कै भाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई। हर कै भाणै सलाहियै, भाणै मन्नै सुख होई। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा

काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहा नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर

कंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याग हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के धोवे है पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरहो फरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी बुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है।

अर्जन क्यों रह हर सेवा बिन, किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीत मराम बताव होरी माई। हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख सरन जगदीश्वर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै, एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सबाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुर राखे दे।

हार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह सुमाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

आओ तुर की भेजी आई अमर नौ खंड जीते सब थान तनंतर तट तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास जह बैसू तह नाले बैसै सगल भवन मह।

भावे मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कौ आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए, वक्र काढ़ो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद बस्तर हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सद

फिर सुहागण संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

पंचपदे प्रथमे तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिए पांत, तृतीया तेरा सुंदर थान, बिगड़ रूप मन मह अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण,

करना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहो जुगह समानी रैन पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख।

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संचिए भाई पाहे न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां नौ निद तेरे।

कह सद ही संगा, कुदरत वर्त रूप अर रंगा, करह ना चुरै ना मन रोवन हारा, अवनासी।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

माते मन सदा आनंद आन रसा मह व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाओ हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु हाट समाए लाख करोरी मिले ना केहे।

आद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

यही व्यवहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाव जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया।

चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भई कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाई, आसा महला पंजवां, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुरपूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे, रहाउ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवां, पांचत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पाव है किल विख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

चरण संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बह आनी आगह दरगह काम ना आवै छोड़ चले अभमानी काहे एक बिना चित लाई उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई रहा।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रम मैं सोई सगल जगत धन अंध, को जागै हाथ।

है साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवां महला पंजवां जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन करन समर

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाऊ, माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राख मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत धूर तन लावे, मन तन अर्प धरे गुरे आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा, तड़का जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाईऐ सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईऐ।

मुक्त पय अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काड लिए निरपव पय सगल पव मिटया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुकाने हो रा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया। सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया। हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया। हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया। शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया। ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्वाणी। आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव। सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई। अमृत फल ना

खजाना आसा महला पंजवा तीरथ जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो स्थान बतावो मीता जा कै हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की।

गावहु। सतगुर अपना सद सदा मनावहु, रहाउ सतगुर का सत शब्द कमावहु। थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु, पर का बुरा न

सूत परोई, कट कट अंतर रव्या सोई, ओपत परलोखिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण कराम ने अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दलाब देह जीती नहीं हारे, किल बिख बनासे दुख दर्द दूर, पय पनीत संतन की धूर रहाव, प्रभ के संत उदाहरण जोग,

मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिन सो मन का मूर्ख ठीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही, घट

हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल जान कै, आत्मनिर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवां, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

प्रभ खबर ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो हर राय। नानक जीवै

ग्रह महमाहर उनकै संग तू हुई है जाहर उनकै संग तू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल उनकै संग तेरा मान महत उनकै संग तुम साक जगत उनकै संग तेरी सब बिद थाटी।

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आराधो दिन सरहन, ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद। साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

संवाह निकसया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिलिया तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो सत।

बाट घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागै होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोडह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर किरपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

सगल धर्म हर के गुण गाम। महा पवित्र साधका संग, जिस भेट त लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकी गात मित कह।

सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकी पागरेन जा को भेट्यो हर हर राई ताकी गत मित।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

सूख सहज मेरा धन सोहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री कराम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना। से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान न माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जान हो काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरपूरा भेट सी सो चल रजाए चतुराई सियाणपां कितै काम ना आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे।

चेतन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया भरपूर सच।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम तै बिन से भ्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया आसा कर नौवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्ब सुख पावो आगे पावो के ना पावो एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हो मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभु पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्स पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंधन वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखै की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजै अरजादे जैसे मीठै साध लुभाए झूठ धंध दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटै बहुर बहुर जन्माते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

मैं रहाउ तिस सेवक कै हो बलिहारी जो अपने प्रभ भावै तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवै आसा घर ग्यारों।

है सारी अनक जोन भ्रमयो भ्रम पीतर सुख है नाही परवेश सारी साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीतारी साध संग मिल हर गुण गाई एहो जन्म पदार्थ

मन केर अगाहा गाखरी गुर शब्दी पार उतरी है रे खोजत खोजत खोज बिचारे तात नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवां दुपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण

के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचों ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे

मोहकम फौज हठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना के

मोहल्ला पंजवां हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपां भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम।

महा भौजल लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निधान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन त्या

मेरा नानक का प्रभ तान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्या

आग सगल से आणपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बद्दी बढ़ियाई

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप कृपाल कृपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

ना रहा, अनन उपाव कर हां, तौ निकसै सरन पैरी सखी, थेर थेर चेत थेर हां, बानी ग्रहो सम

तिस पोखान हा नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हा जपिए सहज धुनी हा साधु रसन पनी हा छूटन बिद सुनी हा पाइए वड पुनी मेरे मना रहाउ खोज है जन मुनी हा सर्ब का प्रवतनी हा दलाब काल धुनी हा दुख बनासनी हा प्रभ पूर्ण आसनी मेरे मना मानसो सेवी है हां

सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइए हां परम पद पाइए हां वा रस जो विदे हां ताको सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड़ भाग्या मेरे मना रहाओ संत पग धोइए हां।

नाई, कर बिन वाजिया पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गुआवे, बाणी बूझे सच सुभावे, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख।

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

कहया बूजै बिख का माता जग स्यों लूजै उत्तम संगति उत्तम होवै गुण कौ धावै अवगणित होवै।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान, जिस कायन तन सहज ना जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे।

कहा वह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहाँ चलो हो मन रहो हो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाने अंतर की गात गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाने निरंकार मह अकार समावे अकल कला सच साच टकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाण है, गुरमुख निर्मल नाम वखाण है। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किलविख दुख काटे हर नाम परगास, कर विचार आचार पराता। सतगुर बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना। बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे। गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हउमै कौरा। रहाओ इहो मन मुगद, कहो क्यों रहसी। बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेलै। काल कंटक मारे सच पेलै, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा। इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा। गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई। गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै। गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी। घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै।

ग्रास इकत थाएं किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

0: मूर्ख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

पास एक लख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खवाई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिक्के कड है ना आए राम ना कबहू चेतेउ हुण कहन ना मिले खुदाए एक घर आवे है अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे दुख जो तिस भावे सो।

सो घर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, हो या शाई माई, इस जर कारण घणी विगुत्ती, इन जर घणी

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मह के तारा राखी है।

मन भावई चले सदार जाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइयां दे टूट ना होई।

छूटी है मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी एको सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर शरणाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

हर जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमे मार, हर जपिए पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार।

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हम मैं मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सो जी पाई निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई पूरा गुर समझाया माति उत्तम होई अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई पूरा सतगुर ता मिले जा नदर करे किले विक पाप सब कटी है फेर दुख बिघन ना होई अपने हाथ वड़ियाईया।

सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हों मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वत है बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाउ हर का गाहक होऐ सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखै मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पत गुआई जमपुर बद्दे मारी है बिरथा जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हूं ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनु देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सब

ठीक है। बहु विद श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई। बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार। एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार। एक धुर पवित पावन है, तुद ना मेलाए। गुर सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए। ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उत बताए। नदर करे जिस अपनी, तिसनु भावनी लाए। सत संतोख एह संजमी, मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ ना पहुंची है, कत कहने अंत ना पाए। गुर ते कीमत पाई है, सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू, गुर शब्द वीच।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाई आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाई सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाई मन सदा हरियावला सहज हर गुण गाए रहाऊ मनमुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जमे सच नाम वापार जो इत लाहै लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन बिन रावै फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हम मारिए सच्चे महल सुख पाए।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाइए नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए। दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लिया मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर। आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर गुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाउ साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव, मीत साजन सो

चरण कमल बोहित पई लग सागर तरियो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माई। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई। जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई। हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाई। अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई। जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

प्यारी जन्म मर है बिख खाई, जिस तू मिलह सो मिले प्यारी तिस कै लागो पाई। जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई, साची प्रीत ना तुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई। जो दुपावे सो भला प्यारी तेरी अमर रजाई, नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुपाई। सब

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वरतदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक।

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज की रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

समूड़े क्यों शूत है जम पाकड़िया बब्बे बूझ नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया ससे संयम गयो मूड़े एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खादै तेरा जन्म गया मम्मे मात हिर लई तेरी मूड़े हो मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कक्के काम क्रोध परम्यो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलिया ला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग पिरक सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औं पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगे शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकानी हासा मोहल्ला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लिखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज घर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनों तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजे दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

वाद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटहो कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

धुनि उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया, तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहे आसमाए। यों कह नानक सतगुर मिले है, तावत थमिया निज

सहो जाण है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी वधाई।

साई सब संसादुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाज है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चाक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

गवाई मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया से मन मुख मूड अपागी राम इन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पए अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महा बिखम जम पंथ दुहेला कलू खत्म मोह अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एहु मनुआ खिन ऊब पयाली भरम दा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै सब गत मित जाण।

तमो रमि उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने रामे नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया।

सुख बनासन पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हरे उत्तम हर हर काम जियो हरे उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस

दुख भनासन पतत पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी सत गुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िय गुरमुख हर सुनिय हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया। सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया। हर हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया।

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिवलाई हर नाम सखाई। हर दरगाह पावे मान जियो, सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो, एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हृदय क्रोध जलाए दियो, मन हृदय क्रोध महाबिसलो।

मन हृदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा हर कीरत मन भाई, परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगति, हर नामे हर सुहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरे वह खिन खिन पग धोवह, जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारी। गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नाम कंठ धारी। सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरन ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नावै अवर ना कोए जियो, जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया। सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर न कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावहें सब तेरे शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ। शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ नानक नाम समाए जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

रस पिन्नी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्नी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडार।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हो।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पाई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पू

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया, हर

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चातरक बूंद जिवें मन सी

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर कुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देखसा।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरस अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पहु भागे आप

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रब जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरण तरिये अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे, प्रयो

मीठा ज्यो राती जल माछुली त्यो राम रस माते राम राजी गुर पूरे अपदेसिया जीवन गत पहाते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी।

हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताटी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माध अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

कहा कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हरसियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चित व्यास घनी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करीजे मान ना कीजे एक राती के हब पाहुनिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावनिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लाल दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

के साथ जब हर पाया मन माहे संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ है आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी आसा महला पंजवा सलोक उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है पावन पतत पनीत नाम निरंजना परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल तल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया मिटे तिसह वसूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग विदे नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वचल हर

सहज सुपाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

आवे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कशु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण भी जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

मन कह संग मोहे उधार लेहो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहू ना तामू सरन पावो करना मैं प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कोलहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहंग ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसे जोबन बदे जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपो भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ त्याई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावहे, सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी, सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठ मंज वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मुहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवै, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख पए, नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलाविया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला पया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निद सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

ना जाइए। आठ पहर हर नाम सिमरहु, चले तेरे साथी, भज साध संगत सदा नानक, मिट है दुख कमाते, वलवंच कर उदर भर है, मूर्ख गावारा, सब किस दे रहे।

नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल मही अल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे कर।

करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत

रत्ते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झाट पाए।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गुआ।

अर तीर्थ नावे है अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

चार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विद्या आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

तिथहु उपज कित संयम एह जाय हम एहो हुक्म है पय किरत फराय हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

ए सब नहा गिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग।

जिन सचो सच वर पाया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलया सच पाया, जिन

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों।

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

पूछ के बह रह करे निवास। सच सब ना हुए दारू पाप कड्डे तोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइय, कूड़ा लालच छड़ी है, होए एक मन अलख ते आई है।

थोड़ी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला, सच काल कूड वरतिया, कल कालख बेताल। बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। जे एक होए ता उगवै, रुती हूं रुत होए। नानक पाहै बाहरा, पूरै रंग ना सोए। भै विच खुंब चढ़ाई है, शर्म पाह तन होए। नानक

होइ बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अतै उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जत का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

सह साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

अत दीर्घ अत मोच हुए जे आवह आस कर जाहे नरासे केत फल फिके फुल बक बके कम न आवह पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत सब को निवै आप कहो पर को निवै ना कोई धर ताराजू तोलीऐ निवै सो गौरा होए अपराधी दूणा निवै जो हंता मिर्गाहे चीस नवाए क्या थी जरदैक सुधे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे धोती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै

फिर पाई होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर। महला पहला नाए मन्ने पति उपजे साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्त वट तागे अवरां।

प्रकार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो करे, मनु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ कतेबा, संजम तुरका भाई।

काग इन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर तो तीक खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा। सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावह उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हस हैं रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

नानक आशिक कांडीए सद ही रह समाय, चंगा चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। आशिक इहो ना आखिए जे लेखै वरतै सोए, महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

आप तिस विच जंत उपायक देखै थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे।

कियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावहु।

इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपज उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एकै ठाहर दोहा बसेरा कहो कबीर जन एको बूझया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्हें बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आओ आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर इं रामह जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोलना गदहा नाचे पैसा भगत करावे।

शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका भाव लए हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब

पड़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अर्ध शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। तट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरयो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

खंडस अवगन मेरा रहाव, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख पजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा, जम का दंड मूंड मह लागे, किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदी तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याउ बिचारे कलमा अकलह जाने पांचों मौसम सला बसावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस कर जी मह मार मणि कर फीके आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मह ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक बू

चरण रहे कर धरक परे है, मुखो नानक सह बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते, मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, आसा एक तुके चार, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले, गुर प्रसाद दीठी रहाओ, सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साच पछान्या।

जराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करी कराया, जो तुर लिखिया।

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावन कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीम न की आस करह, जम निहा

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो अस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले है पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सदमतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बबरे तब

तार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानं, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जय, पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुखती।

साज सब ठाका राम नाम बस होई। अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बुझावे रहाउ। काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी। काम चोलना भया है पुराना गया भरम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करहै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

जीव के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा वेद पवन मन सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई। हासा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआ।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तौ पर साचे हर गुण गाए कूदह अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवे हैं। मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तुम सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती। माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यावो सोइने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साफ कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे कोटी जै ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने।

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास पंच दोख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव उन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

ऊंच भये हैं। गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम योगन तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डरपै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कमन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाओ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिन

तन्ने जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बेख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै, अशली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया, कंचन मने पासे कलवत चीरिया, से कहयाती जागना कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजुलिया, से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़िया, चले चलन हार बचारा ले मनो, गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो, जिमी पुछै।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

आई ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवे हैं गोविंद प्रीति उपजे अवर विसर सब जाय हर सेती चित गहर है जरा का पौ न होवे जीवन पदवी पाए रहाउ गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चले जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाए।

गुरे आपने सद बलिहारै जाऊं। सतगुर मिले हर मन वसै सहजी रहे समाई। रहाउ जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई। बैराग ते हर पाइए हर स्यों रह समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर धात ना लागे आई। दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया वे।

या राम राम सबको कह कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरे। हर हर करह सदा मन चीत रहाउ। हृदय जिन कै कपट वसै बाहर हूं संत कहाहे। तृष्णा मूल ना चुकै अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए। जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए। कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई। नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल। जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै।

पीवत रह सदा सुख होई रहाओ। सतगुर भेटे ता पारस होवै, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवै साच बुझाए। बिन पारसै पूज ना होवै, बिन मन परचे अवरां समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु ना पाईऐ, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजै, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजै, ता

फिर रह ता भरम बिचों जाय रहाऊ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मन

मोकौ राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाउ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम परगास, गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सत संगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याई है, सब को दान दे प्रभ को है, मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है, रहाउ सुख साग

था। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभु पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिले मलाया रहाओ। जां हर प्रभु पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। बड़ भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल ना लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करह जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरियाचार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे।

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन लाहया धूखा हर तन ते मैं नव निद पाई हाथ चरयो हर थूका खाव हो खर्च हो टूट ना आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जाप हो जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो हो।

आओ। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवास, सब त्यागे जम पुरयूठ सदास, हुए अनन मन हट की दृढ़ता, आपस कौ जानात, जो अनिंद निंद कर छोड्यो, सोई फिर खात, सहज सुपाए भई।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कहवासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेर।

संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारू ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारू सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारू रहाऊ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारू नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरू मुक्त भयो चमियारू गुजरी महला पंजवा है ना ही को बूजन हारू जान कमन पता शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझी।

तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वत्सल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

तह भरम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही, नानक टेक भई करते की होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निसे अर भोर,

ताई साध संगत को जोहि न साके मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत पर जारे मोको सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

पंजवां आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद सेती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा ते

सब सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुर पूरे की वडियाई।

पितर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री

मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जम दूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज

डाला। सर्वज्योत निरंजन शंभु छोटो बहुत जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला। मन विचार एक लिव लागी हुनरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाणै रोगी। तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदै गिरी जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया। मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले चेत बरन सब दूता। ब्रह्म कमल मद तास रसादन जागत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब जो आया। उपदेश गुरु मम पुनः ना गर्भं बेख ताज अमृत पियाया। गुजरी महला पहला कमन कमन जाचे हैं प्रभदाती। ताके अंत ना परह सुमार जैसी भूख होए अभयंतर। तू समरत सच देवन हार ऐजी जप तप संयम सच आधार। हर हर नाम दे सुख पाईए तेरी भगत भरे भंडार रहाउ। सुन समाद रह निव लागी एका एकी शब्द विचार। जल थल धरन गगन तै

सर्वदृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर

बूझ अंतर शब्द विचार। अब तब अवर न मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै।

चिन्ना मग्नम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेख करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै।

आई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ। ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं। गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै।

मनमुख भगत ना होई, सुर नर विरत पक करमी नाचे, मुन जन ज्ञान बीचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाच है खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है, जिन गुरमुख शब्द लिव ला

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन।

कमल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी इहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ त्या

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करी खुआर पौड़ी, अपना आप अपायुन तदहो होर ना कोई, मता मसूर ते आप करी जो करे सो होई, तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई, ज्यों तिस भावै तिवें।

आई सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहे समाई पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वास अपने कीता

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी जिनको नदर करे, हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए। महला तीजा, रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो भाओ। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाए किते ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खुआली है

आय नानक हुकुम ना जातु खसम का जे रहा सच सुमाय महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाय इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना ओ चक्का ले जाय एहो हर धन जीए सेती रव रहया जीए नाले जाय पूरे गुरते पाई है मनमुख पल्लै ना पाए धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा किरपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा गुणवंती सलाहया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुख हों मैं पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे है अंत गए पछुताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस हऊ मैं विचों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरनी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव ओए धर्म रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुआव नानक करता बंत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाउ पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवै जाई सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना किसनो पूजे सब कोई सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर सीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाए।

काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन।

ताय गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाई नानक मन ही

आसक्त होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर योगी, जो तिस भाव है सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

तिस जेवड अवर ना कोई। वाहु आहु अगम अथाहु है, वाहु आहु सच्चा सोई। वाहु आहु विपरवाहु है, वाहु आहु करे सो होई। वाहु आहु अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोई। वाहु आहु कर्मी पाई है, आप दया कर दे। नानक वाहु आहु गुरमुख पाई है, अन दिन नाम लई महला तीजा। बिन सतगुरु सेवे

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन ने चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

सच्चा साई पुरख वाला सदा सदा हो तुद त्याई जी जंत सब तेरे आ तू रहे समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए नानक निश्चल को नहीं बाजो हर कै नाए पौड़ी।

राम प्रभ जिस नानक मस्तक भाग पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ पर्वत गारदा जिसनु करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ आप।

तवन्य मित्र असाढ़े से कौट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

संग जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

आप दयाधारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याय पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अघाए। श्लोक मोहल्ला पंजवां।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंतकाल नार

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीच हो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

हां किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाउ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार

आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे। देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही पुर जायो। इतनी ना बूझे कबहू चलना, विकल भयो संग मायो रहाओ। कुसुम रंग संग रस रचिया, विखिया एक उपायो। लोग सुने मन सुख कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो। करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा।

जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

आय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्स समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

आन दिन गुर मिल गाय रहाउ। मिलियो मनोहर सर्ब सो खैना, त्याग न कतहु जाय। अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाय। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाय। कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गाव है हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पीतर तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश्वर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भेख मोहन रहत नरा

रहाल, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारी रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संयम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गोहर की को द्वार, मिल संगत ताज अपमान, कहो नानक पाए हैं परम निदान।

चुटकी रे मन चुटकी रे काकत संग ना चुटकी रे रहाओ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल चुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

विद्या दूतन संगरिया पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहु बंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक को करई राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम हर बिन शांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, जित जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विट्टो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटों वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर

सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए। जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

कियो। हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो। जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए। जिनको बधातै तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए। हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिलिया साधे। जन कहे नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे। कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़े सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर।

चरण लगह, मन प्रिया प्रेम कणा, हर की भगत मंगह, हर भगत पाईऐ प्रभ त्याईऐ, जाहे मिलिऐ हर जना, मान मोह विकार तजिऐ, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगह, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपह, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसई प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावै प्रभ त्यावै, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवह किल विख खोवह, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

0: तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्रात कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन होना बिसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवरव सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन

ज्ञान मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई।

में तार अनुग्रह अपना कर लीना राम पूजा गह काद लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परवीना।

विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखनहारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

सब नोई। सलोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हट क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाण मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित तन

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी किसनों क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का किसनों त्याई दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे डिठे जगत तरिया सब लोड़ी है सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुबाई।

दिसहि ना पारपंखीताहि बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राती नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राह आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली परावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुआ हर आपे तिसनु हुक्म मनावै। श्लोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध।

आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे।

0: रह सदा गुण गाय गिण कर्म किने ना पायु
1: पौक मोए बिल लाय
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आय नानक नगरी पाई आपे लय मलाय पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथक थीजै आपे पुन सब आप कराय आप लिप्त वर्तीजै
1: आपे सुख दुख देवै करता
0: आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम क्रोध के

माए नानक पूर्व जिन कौ लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा। नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होवे सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म।

थैं पर बुझै सब आपे, एक थैं आपे करे इयाणी, इकना अंदर महल बुलाए, जां आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वडियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईऐ नानका, थादे जाहे विकार। मरदाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस कृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पीलाए जमकाल, हित मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार। पौड़ी आपे सुरनर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई। फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास।

भया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बख्शे करे दया आप अपुल ना भुलै कब ही

नाम आप दयाल हुए पहु खंडन आप करे सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यो चेतना लावे जित सुख वसे मन आए तामस लगा सदा फिरे अहनस जलत बिहाई जो तिस भावे।

सब किछु होवै तिसनो परवाह नाही किसै केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावै, सब मोहताजी कढ़ै तेरी। जे तुधनो सलाहे सो सब किछु पावै।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

तृप्त भई हऊ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नजर न आव ही वसह हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ।

पिछड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

सतगुरु मलाया पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहा। ब्रह्म वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहे आसमाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

पानी धोवां, नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, नानक मन आस पुजाए, गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा, गुर सत गुर पासों हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा।

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सोवेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभु दाते जिसह जनावो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल थल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजै ना जियो मरे ना कबहू सीजै वडभागी गुर पूरा पाईऐ गुर कृपा ते प्रभु त्याई रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ भये निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना।

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हौ क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता, हौ पई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। इह कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाय। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देख, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमै लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड़।

किनारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे भाई प्यारी सच्चा भाई प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन।

राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर राव रहे आपर पूरे राम फिर राव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे।

ब्राह्मण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिंगार बनाया हों मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाई हर वर राव है सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडहंस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो।

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीयै पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हऊ मैं मैल परीजै, पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागै, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया।

गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पंडा।

आए। जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते। हौ जीवा हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम, हौ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा।

हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हर आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, बड़हंस महला चौथा, हौ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम त्याया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया,

वह तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

0: मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर झूरे।
0: कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शन।

राम सब बिनसे हम मैं पापा जप हर हर जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो हर तारु कृपा।

ताया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देह सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एह देह सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ वड भागी लंघै गुर खेवट शब्द तराय अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिनै गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन सुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया कित जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई वडहंस महला चौथा देह तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगी।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया। राम मिल सतगुर जी।

पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस मा

0: तुद सलाही
1: गुणे अवगण मेरा किस ना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरणे आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासी मिल

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

हारेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

समाए, जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत में हेली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता है दूरे, नानक सा तन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह पिरह विछुनिया।

कौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना दिया।

ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुर की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना।

काम क्रोध विनास सतगुर का भव छोड़िया मन हठ काम ना आवे रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवहो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिलिया भुख गई भेखी भुख ना जाए दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहज ना आयु सहजे ही लै खाए मन हट जिसते मंगना लैना दुख मनाए इस भेख थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाए शब्द रत्ते तिना सोजी पई दूजे भरम भुलाए पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योति सुभावे।

ना हो गई, अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जित हर का हर नाम बिलोई, सहजे ही हर नाम ले हो, हर तत् ना खोई है, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई है, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है, तिस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अनहोंदा आप गणाईंदी, जम मार करे तिन खुआर, नानक

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुरे अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रत्ना पारख जो होए सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार। मूर्ख आप गणाई दे मर जम है होए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चर हर नामो नित व्यवहार।

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावे लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसे मन आए। अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लखना लखना जाई। पूरा गुर वे खालिया शब्दे सूझी पाई, पुरख से वह से पुरख हो वह, जिन्नी हूं मैं शब्द जलाई, तिसका शरीक को नहीं।

हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज,

गई। हर का नाम गुरमुख किन्ह विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जां गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किसु ना जाए। महला तीजा, हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुर दाता जी का सद जीवै देवन हारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रह, जुग जुग

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत तिन विरलै लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कढ़ो होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश पाओ कर्म कर जमसी से कर भागत देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी।

कहो अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया इन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोठ महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा, सगल भवन की।

इकत रूप फिर परछन्न कोय ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज से तज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किस दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै सोठ महला पहला हों पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण तुम्हारी करता तू मैं मान निमाने मान महत नाम धन पल्लै साचै शब्द समाने रहाओ तू पूरा हम पूरे होशे तू गौरा हम हौरे तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते हर रसना जप मान रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दीसै किस सालाही तिसह शरीक ना कोई प्रणवत नानक दासन दासा गुरमत जानिया सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना तिस काल ना कर्मा जात अजात अजोनी संपहो ना तिस भाओ ना भरमा साचे सचियार विटोह कुरबान ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया साचै शब्द नीशान रहाओ ना तिस मात पिता सुत बंदप ना तिस काम ना नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया घट घट ज्योत सबाई वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाए काल सिर जंता वसगत जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सूरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे है।

कियो, सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही दियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर ना वोह काही दियो। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही दियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही दियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही दियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साकह। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम वसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अपागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादि दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, ओ पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा, नानक नाम रता एक रंगी, शब्द सुवारण हारा, सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटोह वारिया सदही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ, हम शब्द मोए शब्द मार ज्वाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई, शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई।

वह ना बुझह विचारे निंदा दुष्टि ते केन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारे आपस कहो

सरनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाउ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या अज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठा।

पिछाता सफल जन्म जागे आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवे हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचे पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिले नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाए रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाई नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाई सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साध ना आया, संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो। हर नाम देव हो आधारे रहाओ, मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी। पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल होआ। गिल बिख काटन हारा, शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही। ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा। शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने। जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया। दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा। सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बोराना, मनमुख अंधा शब्द ना जाने। झूठे भरम भुलाना रहाओ, त्रै गुण माया भरम भुलाया। हम मैं बंधन कमाए, जमन मरन सिर ऊपर उभो।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए

दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सब है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आप तरह प्रभ आप आप ही जाल बताए दा प्यारा सब जग मछली हरे आप आप अपुल ना भुलई प्यारा अवर ना दूजा जाप आपे सिंगी नाद है प्यारा तुने आप बजाए आप आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तप आपे सतगुरे आप।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप

आपे बख्श कराएंदा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, आपे ही फरमान, आपे भगत भंडार है।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भये साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुर पुरख मिलया प्रभ प्रगटया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन भेदिया

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

रहाउ। कोट पराध मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही। बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में,

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरहै नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हिरदय त्याईए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो हो।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

परिजै करै सो भला मनाइए सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाइय भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख।

साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना, तुम करहो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

संतन स्यों हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रत्ते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर भेद जाने, ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

या आंद मंगल विश्रामा मन बाचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो कामा इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भये हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कशु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभदाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

मांगै तब कौन पड़ता तेरा ढाकै। दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई। काढ़ लेहो संसार सागर बह नानक प्रभु सरनाई। सोट महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी। जप आनंद करहो नित प्राणी हर साचा सिमरहो पाई। साध संग सदा सुख पाई है।

थीवे विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोरठ महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावे बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह हो वह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी

गुरपूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरत महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाईऐ, बिरथी काल न जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु,

प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। सोठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचे जिन हर नाम हृदय परोई। तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन साधारे दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारे। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा। सोठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेर।

गुनी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कहा निहोरो चोठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाय फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई चोट महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

संत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वड़े अवन ना कोई टूठ महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार है राखियो बारिक।